0: अन्य वजह तो तुला वो चांग ना
1: एम यो अन्य जो था
0: अच्छा तुम लोग कुछ की कॉकर ला एम फटों के वन
1: इन सारों हाँ हम लोग का
0: सारों लोग